Chennai. Welcome to MOP Radio. You are listening to 107.8. We are the students from Hindi Club. Namaste. मैं आपकी आज रितिका आपके सामने कुछ भाषण और कुछ चुटकुलों से आपका मनोरंजन करना चाहती हूँ। हर कार्यक्रम की शुरुआत ईश्वर की आराधना से करते हैं, तो अभी आपके सामने श्री लक्ष्मी और पार्वती ईश्वर की आराधना कर हमारा इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे।

0: चलो भारत को स्वच्छ बनाएं, चलो भारत को स्वच्छ बनाएं, मेहनत करके उसका सौंदर्य बढ़ाए, साफ करके अच्छे से सजाए। दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा स्वच्छ भारत अभियान के बारे में, तो अब सुमन आपको इस विषय के बारे में एक संक्षिप्त भाषण प्रस्तुत करेगी।
1: श्रोताओं का सुमन का प्यार भरा सलाम। मैं स्वच्छ भारत अभियान पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी फिरगों को जलाए रखना, लहू देकर ही इसकी सफाई करेंगे, ऐसे दिल में सफाई बरसाए रखना, और ऐसे ही दिल में तिरंगा लहराए रखना, और ऐसे ही दिल में तिरंगा लहराए रखना। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर शुरू की गई एक ऐसी मुहिम है जिससे देश के लगभग 4000 नगरों के सार्वजनिक स्थानों जैसे गलियों, सड़कों आदि की सफाई पर जोर दिया जा रहा है। इस अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी मातृ अभियान के तहत कुछ प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है। खुले में मल त्याग का उन्मूलन करना, गांवों में पक्के शौचालयों का निर्माण, अस्वच्छ कच्चे शौचालयों को जलित सुविधायुक्त स्वच्छ पक्के शौचालयों में परिवर्तित करना, नगर पालिका या नगर निगमों द्वारा कचरे के संग्रह व निपटान की ठोस व्यवस्था करना, साफ सफाई एवं स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता का प्रचार प्रसार करना, गैर सरकारी संस्थानों को भी स्वच्छता कार्यक्रम के लिए पूंजी लगाने में प्रोत्साहित करना। प्रधानमंत्री जी ने कुछ विशेष ख्याति प्राप्त व्यक्तियों जैसे सचिन तेंदुलकर, बाबा रामदेव, सलमान खान, अनिल अंबानी आदि को स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाने के लिए चुना है। भारत के इतिहास में स्वच्छता को लेकर पहली बार इतनी विशाल पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर का अभियान चलाया जा रहा है। विद्यालय एवं महाविद्यालय भी इस अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान संबंधी जानकारी पाठ्यक्रम में भी शामिल की जानी चाहिए ताकि सभी को इसके बारे में पता चले। सरकार को भी स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र आदि संचार के साधनों के माध्यम से लोगों में इसके प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए। सरकार को ऐसी कार्य प्रणाली विकसित करनी चाहिए कि इसको भी इस शुरुआत और इस अभियान में अपना पूर्ण सहयोग दे, तो 2019 तक स्वच्छ भारत के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।
0: धन्यवाद सुमन। क्या आप अपना यह कर्तव्य कर रहे हैं अपने देश के लिए? सोचिए, आज आपका भारत इतना गंदा है तो आगे भविष्य में कैसा होगा? ओ, कुछ ज्यादा हो गया मुझे लग रहा है। तो आपका मूड अच्छा करने के लिए छाया आपको कुछ चुटकुले प्रस्तुत करेगी, सुनिए और एंजॉय कीजिए।
2: डर है कहीं भारतीय राजनीति से प्रेरित होकर CSK और राजस्थान रॉयल्स मिलकर गठबंधन ना कर ले, नहीं नई टीम बना ले, मिले जुले किंग्स इलेवन। अगर IPL में सारी टीम बैन हो गई, फिर भी दिल्ली डेयरडेविल्स 6th पोजीशन पर आएगी। साले आ रहे हैं,
3: लेकिन हमारी थिंकिंग नहीं मिलती।
2: थिंकिंग तो हमारी भी नहीं मिलती, फिर भी 27 साल से रखे हैं। रोज 2 बाल्टी कपड़े की तकलीफ को मिटाने के लिए मैंने शादी कर ली, अब 6 बाल्टी कपड़े धोने पड़ते हैं।
4: बेचारा फंस गया है।
0: अरे, ना मुस्कुराने का जी चाहता है, ना कुछ खाने पीने का, ना सोने का जी चाहता है। ये गर्मी अब बर्दाश्त नहीं होती, सब छोड़कर अब शिमला चले जाने को जी चाहता है। सच में यार, चेन्नई में बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है। आज हमारे साथ 2 लड़कियां हैं जिनके विचार बड़े विकसित हैं। वो हमें विज्ञान के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। चलो अभी उनकी भी थोड़ी सुन लेते हैं।
5: नमस्ते, मैं लक्ष्मी विज्ञान के वरदान के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी।
6: नमस्ते, मैं पार्वती विज्ञान के अभिशाप के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी।
5: युग विज्ञान का युग है। विज्ञान की देन से मनुष्य आकाश में उड़ सकता है, मछलियों की तरह सागर में तैर सकता है, सैकड़ों मील की दूरी पर होने वाले मित्र से बातचीत करते हैं। अर्थात विज्ञान ने जीवन के प्रत्येक पहलुओं में एक महत्वपूर्ण क्रांति उपस्थित कर दी है।
6: विज्ञान के युग में पला हुआ मनुष्य पूर्णतः भौतिकवादी बन चुका है। उसकी आत्मा व्याकुल है, शारीरिक आनंद के साधन उसे विलासी बना दिया है।
5: मशीनों के बढ़ने से हमारा कार्य सुविधा और जल्दी हो जाता है। मानव के वैज्ञानिक विकास में बिजली एक ऐसा सोपान है जिससे हर क्षेत्र
3: में गति बढ़ गई है।
6: मशीनों के बढ़ने से तथा एक मशीन सैकड़ों लोगों के काम करने से बेकारी की समस्या आ गई है। मशीनों के उपयोग करने से घरेलू उद्योग नष्ट हो चुके हैं।
3: मशीनों से चलने वाला वायुयान, जलयान, रेल, मोटर कार विज्ञान की ही देन है।
6: मशीनों से आने वाली धुआं और मोटर कार से आने वाली आवाज से प्रदूषण होता है। आज के युग में प्रदूषण ज्यादा बढ़ गया है।
3: अगर देश में कृषि का विकास पर्याप्त मात्रा से होता है तो देश का विकास भी होगा। विज्ञान ने कृषि के उन्नति के लिए अनेक प्रकार की खादें उपलब्ध कर दी है, जिन्हें फर्टिलाइजर कहा जाता है।
6: फर्टिलाइजर डालने से मिट्टी की शक्ति कम हो जाती है और इसे उपयोग करने से मनुष्य को नई नई रोग आते हैं।
3: विज्ञान के द्वारा मनोरंजन के नए नए साधन उपलब्ध हुए हैं। इसकी वजह हमें घर पर बैठकर दूरदर्शन में सब देख सकते हैं, अनेक जानकारी पा सकते हैं।
6: मनोरंजन के क्षेत्र में विकास हुआ है, इसी की वजह से बच्चे दूरदर्शन के सामने बैठकर उसमें मुक्त हो जाते हैं। वे बाहर खेलते नहीं हैं, सभी दूरदर्शन के सामने बैठे रहते हैं।
3: विज्ञान की उन्नति में मानव के लिए अहित चीजों का जन्म भी हुआ है। परमाणु क्षेत्र में भारत का बड़ा विकास हुआ है।
6: आज अणु और उज्जैन बमों के परीक्षणों को देखकर विज्ञान को वरदान कहकर अभिशाप भी कहा जाता है। इन बमों की वजह से हिरोशिमा और नागासाकी जापान के मुख्य जगह का पूरा नष्ट हो गया।
0: धन्यवाद श्री लक्ष्मी और पार्वती। जिस प्रकार हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार विज्ञान के भी वरदान और अभिशाप होते हैं, और यह हम पर निर्भर करता है कि हम किसे चुनते हैं, वरदान या अभिशाप। तो अपने विचार भी जरूर सोचेगा। आज का यह कार्यक्रम मेरे लिए तो बड़ा रोमांचक जा रहा है, उम्मीद है आपके लिए भी। मेरा भारत महान, तो चलो बढ़ाए इसकी शान, तो सुन लेते हैं उसके बारे में।
1: तो दोस्तों, मैं सुमन आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है आज का भारत। देश मेरा था सोने की चिड़िया, फेंक के साड़ी उतार के चूड़िया, अब यहाँ डोले पश्चिमी गुड़िया। सोना ले गए बेदर्द फिरंगी, रोए चिड़िया देख पेड़ों की तंगी। इतिहास था जिसकी महान गाथा, आज वो समाज बना दो रंगी, तैयार खड़े लड़ने को परमाणु जंगी। कई खो गए महान नेता, देश अब जेले चाले बेढंगी, उग्रवाद गपलों से हुई हालत बदरंगी। इंतजार है उस खुशनुमा पल का, जब संतों की पावन धरती पर खिलेगा कोई नेक फरिश्ता, बरसाने को मेघ सतरंगी, बरसाने को मेघ सतरंगी।
0: ये एग्जाम के रिश्ते भी अजीब होते हैं, सब अपने अपने नसीब होते हैं। रहते हैं जो निगाहों से दूर, साले वही क्वेश्चन कंपल्सरी होते हैं। अभी हम आपको सम तुलना के बारे में भी कुछ बताना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपके सामने छाया को प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरे मुताबिक सबको मालूम होगा सम तुलना क्या होता है, उसका मतलब है इक्वालिटी। चलो अब छाया आपको इस विषय के बारे में कुछ बताने चाहती है।
7: हमारे भारत में अभी भी पुरानी संस्कृति को माना जाता है, अभी भी लड़कियों और लड़कों में भेदभाव देखे जाते हैं। हमारे समाज में अभी भी लड़कियों को माँ के गर्भ में ही मार दिया जाता है। मैं पूछती हूँ कि उन लड़कियों ने क्या किया था, ऐसा क्या किया? लड़की होना क्या पाप है? उन्हें क्यों गर्भ में ही मार दिया जाता है? आज औरत को हर छोटी छोटी बातों पे उनकी इज्जत पर बात आ जाती है। हमारे भारत में अभी भी पुरानी संस्कृति को माना जाता है, अभी भी लड़कियों और लड़कों में भेदभाव देखा जाता है। हमारे समाज में अभी भी लड़कियों को माँ के गर्भ में ही मार दिया जाता है। मैं पूछती हूँ कि उन लड़कियों से ऐसा क्या किया है जो वे इन चीजों की शिकार होती है? आज औरत की घर हर छोटी छोटी बातों पे उनकी इज्जत पर बात आ जाती है। औरत कुछ भी करे उन्हें बुरे नजरों से देखा जाता है। आज औरत को इंसान के रूप में कुचल दिया जाता है और वही एक मूर्ति के रूप में पूजा की जाती है। अगर एक लड़की कम उम्र की है जो अच्छे पद पर है, उसके नीचे काम करने वाले लोग उसकी इतनी इज्जत नहीं करते जितने एक लड़के को देते हैं। घर में माँ बाप भी लड़कियों और लड़कों के फर्क देखते हैं। लड़के की को सारी इच्छाएं पूरी करते हैं और लड़कियों की नहीं करते। क्या लड़की होना पाप है? लड़कियों को अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को त्यागना पड़ता है, जबकि लड़कियां अपनी माँ बाप का सम्मान लड़के से ज्यादा करते हैं। लड़की होना गर्व की बात है, इसके लिए हम लड़कियों को शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। यह समाज को अपनाने के कारण यह भारत अभी भी दूसरे देशों से 20 साल पीछे है। इसीलिए भारत का विकास अभी तक नहीं हुआ है और इसीलिए भारत की सोच भी पीछे है। जब तक हम सभी लड़कियां पुरुष के बराबर समाज में या घर में बराबर की भागीदारी नहीं होगी, तब तक हमें इस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यही लड़कियां एक दिन बड़ी होकर पढ़ लिख कर हमारा मार्गदर्शन करती है। जैसे कि जब एक लड़की बड़ी होकर किसी की पत्नी या किसी की माँ बनती है, इससे हमारा घर का ही नहीं बल्कि समाज का भी भलाई होती है और फिर आने वाली नई पीढ़ी का भविष्य उज्जवल होगा। इसीलिए औरत को हमारे धर्म में भी माता का स्थान दिया गया है और माँ जननी के रूप में पूजा जाता है। औरत ही सृष्टि का निर्माण करती है। वही यदि किसी तरह की भेदभाव और पुरुष द्वारा प्रताड़ित होती है तो हमारी सर शर्म से झुक जाता है। हम सभी वर्ग और समाज से निवेदन करते हैं कि लड़की का सम्मान करना चाहिए और हर माँ बाप को चाहिए कि लड़के की तरह लड़कियों को भी अच्छे से अच्छी शिक्षा प्रदान करना चाहिए, जिससे हमारे समाज में लड़कियाँ बराबरी के हकदार है जिससे हमारे समाज में लड़कियाँ बराबरी के हकदार हो और भविष्य में नई सोच, नई विचार और समान समाज में लड़की के प्रति जागरूक हो सके। जब तक दुनिया में पूरी तरह से लड़कियां शिक्षित नहीं होगी, तब तक समाज में इसी तरह की भावना लड़की के प्रति होगी। और मैं समाज के सभी वर्ग से निवेदन करती हूं कि वह अपने विचार में बदलाव लाकर लड़की के प्रति भेदभाव न रखकर उससे शिक्षा और सही आचरण अपनाने के लिए कहे। यह सभी तभी संभव है।
0: छाया, कुछ अभी अमी हो जाए, समझ नहीं आया। हम आपको अभी एक रेसिपी के बारे में बताएंगे जो आप अपने घर पे बनाने की कोशिश कीजिएगा।
8: नमस्ते, मैं आपकी पार्वती आज चॉकलेट ब्राउनी कैसे बनाना है उसकी रेसिपी बताने वाली हूँ। उसके लिए चाहिए सामग्री 2/3 कप मक्खन बिना नमक वाला, 1 टिन कंसेंट मिल्क, 1 कप पानी, 2 कप मैदा, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 कप कतरे हुए बादाम, काजू, चोको चिप, 1/3 कप दामेदार चीनी, 1.5 डार्क चॉकलेट, 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 4 टेबलस्पून कोको पाउडर। दीदी, सबसे पहले मक्खन को पिघलाइए। पानी और कतरे हुए चॉकलेट चिप्स को माइक्रोवेव में गर्म करें ताकि वो एकदम चिकना हो जाए। इसे ठंडा हो जाने दें। मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक को एक साथ मिला दें। वह अच्छी तरह से सारे रिपीट अच्छी तरह से सारे मिश्रण को फेर लें। बेकिंग ट्रे में चिकनाई लगा दें व मिश्रण को उसमें फैला दें। ऊपर से बादाम वगैरह बुरक दें। 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म ओवन में 15 मिनट के लिए रख दें। 180 डिग्री में 10 मिनट बेक करें। आपके केक तैयार है। इसे आधा घंटे तक ठंडा करें और फिर परोसिए। धन्यवाद।
0: पता नहीं क्यों आज मेरा मन कुछ ज्यादा ही देशभक्त हो रहा है, जो मैं बहुत कम वतनी मोहब्बत में मेरी जान हम कुर्बान हो जाए। आए मेरे वतन, तुझ पर मेरी जान पना हो जाए। बाबा, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। तो अब मैं स्वस्थ संबंधी 3 टिप्स प्रस्तुत करने सुमन को फिर से आमंत्रित करना चाहूँगी।
1: स्वास्थ्य संबंधी टिप्स। ठोस भोजन शिशुओं के लिए हानिकारक। 6 मास से कम उम्र के शिशुओं को ठोस भोजन देना खतरनाक होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि नई माताओं को नवजात शिशुओं को ठोस भोजन के बजाय स्तनपान कराना चाहिए। बच्चे के जन्म के बाद 6 महीने के भीतर ठोस भोजन से बचना चाहिए। यहाँ तक कि गाय का दूध, अंडा, मछली और दूसरे पदार्थों को भी अवधि के दौरान न देना श्रेष्ठ है। दूसरा हेल्थ टिप, कैंसर दूर भगाते हैं फल सब्जियाँ। स्वीडन में एक शोध के अनुसार जो लोग फल एवं सब्जियों का अधिक सेवन करते हैं उन्हें दिल का कैंसर होने की संभावना बहुत कम होती है। इस शोध में यह भी सत्य प्रमाणित हुई है कि कैंसर की संभावना को गाजर कम करती है। गाजर के अतिरिक्त भी फल एवं सब्जियों में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। इसका सेवन कैंसर की रोकथाम के लिए अच्छा है। तीसरा, शहद संक्रमण रोकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसंधानकर्ताओं ने लंबे अध्ययन के बाद इस बात का पता लगाया है कि शहद में प्रचुर मात्रा में एंटीबायोटिक तत्व मौजूद होते हैं जो न केवल कटी-फटी त्वचा एवं घावों को शीघ्र भरते हैं बल्कि किसी भी प्रकार के संक्रमण को पूरी तरह रोकने में सक्षम है। हाल ही में प्रकाशित बी जनरल के अनुसार इसराइल के अनेक राजकीय और निजी अस्पतालों में घावों, फेफड़े और अल्सर आदि की चिकित्सा हेतु शहद का खूब प्रयोग किया जा रहा है। धन्यवाद।
0: हेल्थ टिप्स के साथ ही कुछ अमेजिंग फैक्ट्स भी हो जाए कि श्रीलक्ष्मी आपके सामने प्रस्तुत करेगी।
5: शहद एकमात्र ऐसा खाद्य पदार्थ है जो हजारों वर्षों तक भी खराब नहीं होता। अपने जीवन काल में एक साधारण मनुष्य भूमध्य रेखा के 5 बार चक्कर जीतना चलता है। एक वृक्ष पेड़ से प्राप्त होने वाली लकड़ियों के 1,70,000 पेंसिल बनाई जा सकती है। एक सामान्य मनुष्य के हर रोज 200 बार जैसे है। पूरे अल्फाबेट में आई के ऊपर आने वाले बिंदु को टीटल कहा जाता है। क्रिकेटर युवराज सिंह ने एनिमेशन फिल्म जंबो में अपनी आवाज दी थी। जैसे हर मनुष्य के अंगुलियों के निशान अलग होते हैं वैसे ही जीभ और आंखों के निशान भी अलग अलग होते हैं। कटे हुए पेड़ की लकड़ी के गोले रंग और आकार को देखकर यह अनुमान लगाया है कि उसकी उम्र कितनी है, किस उम्र में वह कितना बड़ा और किन सालों में उसका विकास कम हुआ। ज्यादातर विज्ञापनों में घड़ी में 10 बढ़कर 10 मिनट का समय दिखाया जाता है। अगर हम अपने दोनों हाथों को फैलाए तो यह हमारे शरीर की लंबाई के बराबर लंबाई होगी। इंसान का दायां पैर बाएं पैर की अपेक्षाकृत अधिक लंबा होता है। एक ऊंट की तुलना में एक चूहा ज्यादा लंबे समय तक बिना पानी के जिंदा रह सकता है। दांतों के ऊपरी परत पर सड़ा पदार्थ एनिमल शरीर का सबसे सख्त पदार्थ होता है। गिलहरी का एक दांत हमेशा बड़ा रहता है। एक स्वास्थ्य युवा व्यक्ति का मस्तिष्क 20 वाट विद्युत पैदा कर सकता है। एक चूहा 5 मंजिली इमारत से गिरने पर भी चोट नहीं खाता।
0: अब इस कार्यक्रम की समाप्ति हम कुछ चुटकुले से करना चाहते हैं।
9: रावण, सीता, इस साधु को भिक्षा दे दो। सीता, यह लो। रावण, लक्ष्मण रेखा के बाहर आकर दो। सीता, यह लो। रावण, हाहा, मैं साधु नहीं रावण हूँ। सीता, मैं भी सीता नहीं कामवाली हूँ।
7: हर आदमी अपनी जिंदगी में खुद को हीरो मानता है, बस उसकी फिल्म रिलीज नहीं हो पाती।
0: आज का कार्यक्रम बस इतना ही। अगली बार हम जरूर आएंगे और कुछ ऐसा ही और कुछ अलग कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। ये हमारा पहली बार था। उम्मीद है कि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा हो। Till that, stay tuned to 107.3.

वर्तनो निवृत्तात्मा संवृद संप्रमर्दनः अह संवर्तको वन्नीरणिलोधरणीधरः सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्वदृक् विश्वभुक् विभुः सत्कर्ता सत्कृतस्सालुर्जह्नुर्नारायणो नरः असङ्ख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टशिष्यकृच्छुचिः सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धिद सिद्धि साधनः वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्त श्रुति सागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्ट प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः वृद्ध स्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशुर्भवो बाणः शशबिन्दुः

सदानंदो नंदिर ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विदेयात्मा सत्कीर्तिश्चिन्न संशयः उदीर्ण सर्वतश्चक्षुरनीशशाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूधिर्।

महाकर्मो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्ञ महायज्ञो महाहविः सव्यस्तव प्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णपूरयिता पुण्यपुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेदा वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमनाहविः सद्गतिस्सत्कृतिस्सत्ता सद्भूतिस्सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः।

नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पांडव सोहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः स्तुत एव न संशय ॐ नमेति व्यासोवाच वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव।